0: आओ जी,
1: आओ ना,
0: ऐसे घबराओ ना, बादल सा उजाला है, रेशम सा अंधेरा है, महफिल ही ऐसी है, भूल भुलैया जैसी है, आने को आ जाओगे, वापस ना जा पाओगे, और जाके